0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0200-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। लिसनिंग टू कैलगरीज मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today with Sabrong Radio. Your brand, on air and on ground. Visit sabrong.ca or call 403-400-0203.

0: अश्विनी जी के बाद NIA आई पहुंची है, असी NIA वो मिनिस्टर लिखांगे साहब इन्हां दी पड़ताल की जाए, दे शुड बी इन्हां नूं बुला के इंटरोगेट किए जाण, सारे आ लीडर है जिहड़े बयान दे रहे हैं।
1: विधानसभा दे विच विरोधी धिर दे लीडर प्रताप सिंह बाजवा ने मुख्यमंत्री मान नूं इस मसले ते घेरदिआं पुछिआ कि तुसीं BJP दे उन्हां लीडरां दा नाम दस्सो जिहड़े बंब धमाके च शामिल हन। मुख्यमंत्री दा बयान कहिंदे बहुत ही संगीन है। बाजवा ने CM दे बयान दी निंदिआ कीती।
2: सो सारिआं नूं पहली मेरी डिमांड अज भगवंत मान को होएगी, मान साहब जे तुहाडे कोल प्रूफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह ब्लास्ट कराए ने, ते कृपा करके सारे प्रूफ पंजाब दे लोकां सामने रखो। इमीजिएटली साडी डिमांड है FIR दर्ज कीती जाए, और जिहड़े भी बंदे या जिहड़ियां फोर्सेस इनवॉल्वड ने भारतीय जनता पार्टी उन्हां दी इमीजिएट अरेस्ट होनी चाहिए। जे चीज वो नहीं साबित कर पाते फिर मेरी सेंट्रल सरकार नूं यह मंग होएगी कि जे चीफ मिनिस्टर इस चीज नूं प्रूफ पंजाब दे लोकां सामने नहीं रखता ते कार्रवाई नहीं करता,
1: स्वीकार करनी पवेगी कि भविख विच अजिहीआं घटनावां ना होण, इस करके सब नूं तैयारी करनी चाहीदी है। यह साडी सारिआं दी जिम्मेदारी है। जे इस तरह दी घटनावां हो रही हन उन्हां नूं रोकण लई सारे मिलके कोशिश करन, सिर्फ वेख दे रहन नाल काम नहीं चलेगा, सारिआं नूं इहदे विच अपना योगदान पाउणा पवेगा। आम आदमी पार्टी दे राज्यसभा MP संजय सिंह ने BJP नूं घेरदिआं कहा है कि बंब धमाकिआं तों बाद BJP पूरी तरह बुखलाई हुई है, धमाकिआं नूं लै के गलत बयानबाजी कीती जा रही है। संजय सिंह ने इत्थों तक इल्जाम ला दिता कि 17 दीआं विधानसभा चोणां तों पहलां अकाली ते BJP दी सरकार ने ही मौड़ मंडी दे विच धमाका करवाया सी। संजय सिंह ने कहा कि BJP दा पिछोकड़ ही इसे तरह दा रहा है, चोणां तों पहलां धमाका करवाउंदे हन। BJP खुद कह रही है कि उन्हां दा मिशन हुण पंजाब है, उह किसे वी हालत विच इस नूं जितना चाहुंदे हन।
3: कल पंजाब में दो स्थानों पर ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी बौखला कर जिस तरीके से सामने आकर बयानबाजी कर रही है, इससे मुझे याद आता है कि 2017 के चुनाव के पहले जब वहां पर अकाली दल और BJP की सरकार थी, ऐसे ही मौड़ का ब्लास्ट कराया गया था।
1: समाजवादी पार्टी दे मुखी अखिलेश यादव भी पंजाब दे इस मसले ते बोले हन। उन्होंने इस सब कासे लई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नूं जिम्मेदार ठहराया। कहिंदे जे कोई धमाका होया ते इसदा जिम्मेदार कौन है? देश दा गृह मंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि की तुहानूं पुलवामा हमला जां पहलगाम बारे पहलां पता लग गया सी? जदों तुहानूं पुलवामा ते पहलगाम बारे पता नहीं लग्या तां इस बारे भी तुहानूं पता नहीं लगेगा। सो सारा मसला हुण संगीन हुंदा जा रहा है। धमाकिआं तों बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने BJP ते सिद्धा इल्जाम लाया, कल भी बयान दिता, अज भी उन्होंने बयान दिता है ते BJP दा हुण सारा लाम लश्कर मुख्यमंत्री भगवंत मान दे पिछे पै गया है। माणहानी दा नोटिस भेज दिता है, DGP दे कोल जाके कह रहे ने कि मुख्यमंत्री दे खिलाफ देश द्रोह दा मुकदमा दर्ज होना चाहीदा है। ते जिस तरह दा सियासी माहौल बनिया होया है ते जिवें 2027 दीआं चोणां नेड़े हन, लगदा नहीं कि दोवां धिरां दे विच टकरा छेती किते मुक्कण वाला है। हाले 36 घंटे भी नहीं हुए जलंधर ते अमृतसर दे विच हुए बंब धमाकिआं नूं कि अज जलंधर दे नाल फरीदकोट दे विद्यक अदारिआं नूं बंब नाल उडाउण दी धमकी दित्ती गई। जलंधर दे APJ स्कूल समेत 5 तों 6 स्कूलां नूं धमकी भरी मेल भेजी गई। जलंधर दी ADCP साक्षी जैन ने दस्सिआ कि स्कूलां दी बरीकी दे नाल जांच कीती गई है, कुछ भी शक्की नहीं मिलिआ, धमकी फोकी निकली है। बंब दी धमकी नूं मुख्यमंत्री मान दी जलंधर फेरी दे नाल जोड़ के भी वेख्या जा रिहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री शुकराना यात्रा दौरान वीरवार नूं जलंधर दे विच सन। धमकी भरी ईमेल तों बाद बच्चिआं नूं स्कूलां छुट्टी कर दित्ती गई। उधर फरीदकोट दे विच मुख्यमंत्री भगवंत मान दे दौरे तों पहलां भी 3 स्कूलां ते कालजां नूं बंब नाल उडाउण दी धमकी मिलण करके माहौल गरमा गया। इस तों बाद जिला पुलिस ने संबंधित विद्यक संस्थावां नूं खाली करवा के जांच ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन
4: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਥਰਸਡੇ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਅਤੇ ਸੰਡੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੂਮ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੈਨਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, 13ਵਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ

0: आप लोग आए और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने इतना टाइम निकाल के आए. नो वी बिजी है काफी आपका
1: स्केड्यूल. नो थैंक यू, यू टेकिंग टाइम आउट ऑफ योर स्केड्यूल टू नो अप्रिशिएट.
0: तो इसीलिए हम इस पे बात करते हैं. तो इरफान जिदा ये ग्रीन डोम दे नाल लेटर ने ते उत्थों हमेशा ही कुछ ना कुछ चंगी एक्टिविटीज होंदिया रहंदियां जिदे वास्ते साडे नाल शामिल हुंदे ते अज पुछदे इन्हां नूं वी ये की करन आए ने ते की कुछ लैके आए ने. जी इरफान, वेलकम टू सबरंग रेडियो वंस अगेन.
1: Thank you. We're here to just get the message out, you know. Mm-hmm. Thank you so much. You give us your platform. You let us come out here, talk to your viewers, talk to your fans, talk to the people who listen to you. Mm-hmm. And we just come with a positive message for fundraising for the Green Dome Islamic School, as you said before. It's a beautiful project that was recently constructed. And we're trying to build the third floor of that project. And so we're trying to hold an event to give some people some entertainment, some activity, while also aligning it with the good cause. Many of us have probably heard Ali Zafar, a very popular singer, very popular
0: Pakistan
1: songwriter.
0: Pakistan maybe or India maybe?
1: Yes, he's very internationally recognized. Yeah, and he's coming for the first time ever to do a Qawwali performance. And in fact, he's coming on May 17th, Sunday, May 17th, and he's coming to the Genesis Center in the Feature Gym. And so we're here to just tell everybody, get your tickets, come and support this project. And we're
0: same jagah pe jagah hum kar rahe hain 16th ka 17th ko wahan pe
1: bilkul
0: different type of event hoga. Genesis ka jo Feature Gym hai, bada zabardast gym hai, usme hum sare apni activities karte hain. Aur I think bhi waise to Green Dome bhi kafi bada hai aapke paas, wahan pe bhi kafi jagah hai.
1: Yeah, the thing is though that our event hall, well, it's a big event, a big name. Yes. So we're going to need a lot more capacity. And so long time partner Genesis Center, and we've set up over there, and so it's going to be a good program.
2: Yeah,
1: so
2: we find that we can have about 1,800 people that can probably come fit in that Genesis Center, whereas Abidjan Green Dome out there in Marina, I think about like 600-700 people we can fit.
0: तो वही बिल्कुल काफी बड़ा इवेंट है. और हमारे भी जैसा, क्योंकि एक दिन पहले ही हम वैसाखी कर रहे हैं जिसकी मैं बात कर रहा था, तो उसमें भी हमें काफी अच्छा रिस्पांस है. तो फर्स्ट टाइम हम थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं के मुकाबले. तो हमेशा ही करते हैं, तो सोचा भी कुछ ना कुछ डिफरेंट हो जाए.
1: अब तो जेनेसिस सेंटर भी सबरंग हॉल हो गया.
0: एक्चुअली क्या है कि जो हमारा सबरंग से पहले जो मेरा फर्स्ट ऑफिस था, तो वो आई वेब गाय के नाम से था.
1: अच्छा.
0: जिसमें मैं वेब और ये वो डेवलप करता था. तो उसी रूम में जेनेसिस ने बाद में रूम लिया जब मैंने सबरंग का अपना क्या बोलते 16 ईयर अगो ऑलमोस्ट. तो जब मैंने ये रेडियो का शुरू कर लिया फुल फ्लेज, क्योंकि 24/7 रेडियो था, तो वो मूव किया तो जेनेसिस वाले मेरे वाले रूम में आए.
1: अच्छा.
0: क्योंकि इनको वो ऑफिस सेटअप करना था टेम्पररी जब तक इनका शुरू नहीं हो जाता. तो दैट्स व्हाई यू आर राइट कि ये सब और मैं फर्स्ट बंदा था जिसने वहां पे इवेंट किया. फैमिली डे का हमारा फर्स्ट इवेंट था जो फैमिली डे का हम करते हैं. तो उस टाइम में मेरी टीम के डिफरेंट डिफरेंट लोग आज कल भी हैं. तो वो बस तब से लगातार चल रहे हैं. तो जेनेसिस का और हमारा प्यार वैसे बना हुआ है.
1: Yeah. I'm glad you bring up family day because it's a family event too. It's a family event. Many people, everybody, we hope everybody comes. Come with your family, come with your friends, come with everybody. Come and attend this program. It's a very good program. It's a performance as well. Very strong performance. I know all of us are big fans of Ali Zafar. A lot of us are. And so we're going to come there. We're going to see, attend a wonderful performance. And at the same time, there's going to be a fundraising. There's going to be an auction. And we're going to raise some funds for a beautiful cause.
0: Definitely. I think aap logon ne main apne listeners ko bata dun bhi. Isse pehle bhi Ali Zafar aa rahe hain. Isse pehle bhi bade acche नाम इन्होंने बुलाया है. मुझे वैसे पता है सब क्रिकेटर से, और मैं चाहूंगा भी आप उसके बारे में भी बताएं कौन कौन पहले आ चुके हैं.
1: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. सो बिफोर दिस वी नीड टू फाइंड फंड्स एनी वे शेप और फॉर्म. वी नीड टू फाइंड देम हाउ एवर वी कैन. एंड सो वी नीड टू फाइंड अ सेंट्रल मीडियन, पीपल लाइक सेलिब्रिटीज, पीपल लाइक दिस पीपल. एंड सो व्हेन वी ब्रिंग देम, मोर पीपल कम ऑन बोर्ड, मोर पीपल गेट अ चांस टू सी. अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट द प्रोजेक्ट इन द फर्स्ट प्लेस. एंड सो फर्स्ट वी इन्वाइटेड वसीम अकरम, वेरी फेमस क्रिकेटर, वेरी पॉपुलर cricketer, and he came and we had a wonderful program.
0: Usko dekh dekh ke bade hue hain, ki uski bowling ko dekh dekh ke kaise करते तो वैसे हम भी जोर कर मारने की कोशिश करते
1: या नहीं बड़ी अच्छी राइवलरी थी
0: बहुत बहुत
1: अंदर में तो देन वी हैड शुएब अख्तर वेरी फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड ही केम वी हैड अनदर फंडरेजर विद हिम एंड नाउ those fundraisers were before the project construction was complete so those were to help in the construction but now we need we have a developed facility it's been open for 2 years now kids are learning in there 350 students are learning in there right now and so it's a great facility for kids

0: किसी को और कोई गाना सुनना है नहीं सुनना वो जरूर सुनते थे
1: yeah.
0: तो वो कव्वाली ऐसी इतनी अच्छी थी तो आई थिंक कव्वाली का तो सारे लोग इंजॉय करते हैं
1: yeah.
0: तो डेफिनेटली अच्छी कव्वाली है, अच्छे सिंगर हैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनको पता भी कैसे एंगेज करना ऑडियंस के साथ.
1: Absolutely.
0: तो आई थिंक अच्छा करेंगे और आपको ग्रीन डॉम को ढेर सारा पैसा भी इकट्ठा होगा. तो ये बड़ा अच्छा कोज है. 17th को ये होने जा रहा है. एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं,
1: ठीक है,
0: ताकि जो फिर उसके बाद में हम अपनी बातें जो है वो इसी तरीके से जारी रखेंगे. सबरंग रेडियो 94.7 जेरे दोस्त सोने दस दी अज साडे नाल इरफान ते हैदर शामिल होए ने जी, जेडे ग्रीन टाउन तो आए हैं. तो इन्होंने काफ़ी एक वधिया उपराला कर रहे ने जिदे च अली जफर जेडे कि बेहतरीन आर्टिस्ट ने इंडियन मूवी बॉलीवुड पाकिस्तानी मूवी या सिंगिंग दे लेवल दे विच उन्हां दा बहुत वड्डा नां है जिहड़े इत्थे पहुंच के स्पैशल ग्रीन डोम दी ग्रीन डोम नूं क्योंकि इन्हां नूं काफ़ी ज़्यादा डोनेशन चाहीदियां ताकि उहदे च होर कई एक्टिविटीज़ करनियां हैं तो उहदे वास्ते पहुंच रहे ने. सो उत्ते गलबात आपां जारी रखांगे बट एक छोटा
2: जिहा फीमेल फैमिली फिजिशियन दा स्वागत करदा है.
3: गर्मजोशी समझदारी ते प्यार नाल ओह तुहाडे परिवार नूं कंफर्टेबल ते वेल केयर्ड फील करवाउण लई हमेशा तैयार है.
2: हुण तुसीं उहनां नाल इंग्लिश हिंदी उर्दू ते पंजाबी विच वी गलबात कर सकदे हो ताकि तुसीं घर वर्गा एहसास महसूस करो.
3: नवे पेशेंट्स हुण एक्सेप्ट हो रहे ने, अज ही अपने परिवार लई फैमिली डॉक्टर सिक्योर करो.
2: कॉल करो 5873606890 लाइफ लाइन मेडिकल क्लिनिक वॉक इन सवेरे 9 बजे तो शाम 6 बजे तक.
3: सानू मिलो किंग्स व्यू बुलेवर्ड ते या कॉल करो 5873606890.
2: थोड़े परिवार दी सेहत साड़ी जिम्मेदारी.

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। लिसनिंग टू कैलगरी मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today with Sabrong Radio. Your brand, on air and on ground. Visit sabrong.ca or call 403-400-0203.

0: VIP या VIP होते नहीं हैं, पर हमें बनना पड़ता है.
1: Yeah, no, and the majority of the tickets that are being sold are actually the closer ones. So if you want a good seat, then you're falling behind right now. You have to make sure a few of those tickets are left. So make sure you get those.
0: बिल्कुल. और जिन लोगों को actual में show enjoy करना तो वो तो definitely आगे.
1: बिल्कुल. I will say you can enjoy the performance from any seat, but you can enjoy more the closer you get.
2: बिल्कुल. Yeah, with the sound system too, जो हमने उधर है ना हमारा, उन्होंने आके check भी किया.
1: Yeah. Our whole engineering, there's a whole engineering team involved, a whole audio visual system team involved, and so this is going to be a good high production quality event too.
2: And you'll be very immersed in it, with the big thing being like, you know, jaise gaane ka banda sunta hai na, banda aise, you get to connect with it emotionally, and it'll make you feel like, you know, very humiliated, humility and all this stuff, where I think you're going to jam wherever you're sitting, you're going to have fun.
0: Bahut acha hai, kaafi acha. इवेंट होने जा रहा है अली जफर का 17th को, तो उसमें आप जरूर पहुंचे. इवेंटब्राइट से टिकट लें, और किसी फोन पे अगर स्पॉन्सरशिप के लिए बात करनी है तो कौन से नंबर पे कर सकते हैं?
1: Absolutely, I'll say it one last time. 403-477-6684. Give me a call. I'm more than happy to give you all the sponsorship information and ticket information if you want to know a little bit more. Anything you want to know, give me a call. You can get all that info.
0: बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है. तो आज वंस अगेन मैं बता दूंगी, हमारे साथ हमारे दोस्त पहुंचे हुए हैं इरफान. दोस्त मैं इसलिए कहता हूं, चाहे आप हमारे से काफी छोटे हैं, बट हम इसीलिए पहुंचते हैं तो ठीक है.
1: नहीं, इट्स ऑलवेज ऑलवेज अ प्लेजर टू कम ऑन, एंड इट्स फ्रेंडशिप है ही है.
0: बिल्कुल. तो हम कुछ अच्छा काम कर पाए तो यही हमारी कोशिश रहती है, वो हम करें इसी हवाले से. सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग.
1: थैंक यू फॉर हैविंग अस.
0: आने वाले टाइम में फिर इस पर बात करते हैं.
1: ऑलराइट, थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट इट.
0: थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. आई थिंक फेसबुक पे हम बंद कर देते हैं, तब तक हम कुछ सुनते हैं, सुनाते हैं, एंड देन आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हैं. सो ये प्रोग्राम तुम मंडे ट्यूजडे थर्सडे फ्राइडे 7 to 8 तक, संडे कोई तो लैके 5 बजे तक सुन दो. एक छोटा जहा कमर्शियल मैसेज सुन लें जी, तो इस तो बाद वापस मिलते हैं. बाकी दिन गलत बताते खबर जी इसे तरीके न जारी रहेंगे इस कमर्शियल मैसेज के बाद.
3: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਸ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203 403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca.
4: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर.
5: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक, जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है.
4: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से.
5: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर.
4: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है.
5: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है, और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं.
4: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर, या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890. लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक,
5: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी.
6: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए. सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर, जहां होता है एनर्जी, एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन. चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग, कोई खास इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन, हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते, हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं. हमारी टीम पहुंचती है आपके पास, लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में. ज्यादा पहचान, ज्यादा भरोसा, ज्यादा ग्राहक. अपने बिजनेस को बनाइए खास, दिखाइए, सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए. आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ, आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी. Monday, Tuesday, Thursday and Friday, 7 to 8 p.m. Sunday, 1 to 5 p.m.
7: Asia Pacific Immigration Consulting Limited. Student visa, visitor visa, super visa, LMIA applications, family immigration, provincial nominee application, ate citizenship application vich lamba tajruba te maharat rakhda hai. Tuhadi sahulat layi main Maninder Singh Tillo ate Inderjot Kaur Tillo ikko chhat het immigration ate insurance diyan sewawan pradan karde hain. Sanu sampark karn layi 403-225-1111. Maninder Singh Tillo, Asia Pacific Immigration Consulting Limited.
8: Regulated Canadian Immigration Consultant.
7: 403-225-1111.
6: From the heart of Calgary to every corner within a 250 kilometer reach, Sabrang Radio is connecting voices, stories and communities like never before. Whether you're in Calgary, Airdrie, Chestermere, Cochrane

0: इंडिया इंश्योरेंस की बहुत अहमियत है। किसी भी तरह की इंश्योरेंस से पंजाब इंश्योरेंस दे रीजनल मैनेजर हरपिंदर सिद्धू नाल आज ही संपर्क करो। सुपर वीजा लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस आरईएसबी दिया वधिया सेवावां लई पिछले लंबे अरसे तो कैलगरी विच जानिया पहचानिया नाम है हरपिंदर सिद्धू। ए इंश्योरेंस लई नामवर कंपनियां नाल काम करदे हन। होर जानकारी लई पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिद्धू नाल 403-404-3500 ते संपर्क करो।
1: अपने घर का दूजा नाया सुकून ते कैनेडा च घर खरीदना एक वड्डी चुनौती।
2: घर खरीदण तो पहला इत्मीनान नाल किसी प्रोफेशनल दी सलाह जरूर लाओ।
1: वधिया घर खरीदना पैसे बचाने ने सिरदर्दी तो भी बचना ते याद कर लो एक नाम मनदीप सिंह गिल।
2: सिर्फ घर खरीदण ले ही नहीं बल्कि वेचना भी होवे ता बिल्कुल सही सलाह देणगे मनदीप सिंह गिल।
1: घर खरीदण ते वेचण लई मैक्सवेल सेंट्रल दे नाल काम करदे मनदीप सिंह गिल देणगे वधिया सलाह ते प्रोफेशनल सर्विस।
2: भरोसेयोग ग्रेटर मनदीप सिंह गिल दा नंबर नोट करो 403-617-1868।
1: जेकर कर रहे हो घर खरीदन ते वेचन दी प्लानिंग मनदीप सिंह गिल नू कॉल कर लो जां विजिट करो उना दी वेबसाइट mandeep.realtor।
2: मैक्सवेल सेंट्रल दे रियल्टर मनदीप सिंह गिल 403-617-1868।
3: फ्लाइट बहुत लेट हो गई, खान ले बर्गर ले लिए।
4: ना जी अपा ते गर्मा गर्म रोटी खावांगे।
3: माले नखरे ना करो मेथो रात दे 3 बजे रोटियां नहीं पकदियां।
4: ओहो तुहानू नहीं कष्ट देना अपा चलना समोसा हाउस इंडियन कुजीन एंड स्वीट्स जो 24 घंटे खुले हुंदे ने।
3: समोसा हाउस इंडियन कुजीन ब्रेकफास्ट विच गर्मा गर्म परौठे लंच एंड डिनर विच पूरियां छोले भटूरे फिश टिक्का चाइनीज इंडियन फूड हर प्रकार दी मिठाइयां अते केटरिंग भी करदे ने। इंडियन कॉफी अते कुल्लर स्पेशल चाय भी इन्हां कोलों मिलदी है। हर प्रकार दे खाने वाली शानदार रेस्टोरेंट समोसा हाउस इंडियन कुजीन एंड स्वीट्स ओपन 24 आवर्स यूनिट 2154-4310-104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कॉल 403-461-6161।
5: सोने घर दी निशानी हुंदी है शानदार फ्लोरिंग जिथे कदम रखदिया ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी दा पता पुछन लग जान ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंदी फ्लोरिंग दा समान। फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान कारपेट हार्डवुड लेमिनेट टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनां नाल भरिया है इना दा शोरूम। अज ही इना दे शोरूम ते पुजो 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कैलगरी कारपेट एम्पायर। फोन नंबर 403-510-1515 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
1: ताजियां सब्जियां फल फ्रूट दालां मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा। कीमतां कट ते क्वालिटी A1।
2: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
1: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां। हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक
2: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर। पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंस ड्राइव।
1: दूजी लोकेशन 117-7780 एवेन्यू।
2: तीजी लोकेशन 570-6520 फॉल्कन रिज बुलेवार्ड।
1: चौथी लोकेशन 606 सिटी स्केप स्क्योर।
2: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे।
1: छेवी लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी।
2: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
1: 403-835-2222। नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे कैसल रिज एरिया दे विच है लॉट खरीदन दा शानदार मौका जिथे बनाए जा सकदे ने 3 टाउन हाउस। एना ही नहीं इना तिना दे नाल लीगल बेसमेंट स्वीट भी बनाईया जा सकदियां ने। बिल्डर्स ते इन्वेस्टर्स लई है शानदार मौका। फ्यूचर रेंटल इनकम लई है ए एक बहुत वधिया ऑप्शन। वधेरे जानकारी लई कॉल कर सकदे हो एमे नू 403-617-1111 ते अमन गिल नू भी कॉल कर सकदे हो 403-479-7007 ते। बिल्डिंग परमिट पहला तो ही अप्रूव्ड है।
6: ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ।
7: ਧੰਨਵਾਦ ਮਨਦੀਪ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।
6: ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ?
7: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹੋਣ ਔਰ ਮੇਰਾ

0: ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ।
1: अल्बर्टा सहित कनाडा में खसरे का प्रकोप बढ़ रहा है। खसरा एक अत्यंत संक्रामक रोग है, लेकिन टीकाकरण द्वारा इसे रोका जा सकता है। समय पर टीका लगवाकर अपने परिवार और समुदाय को सुरक्षित रखें। खसरा ना होने दें, टीका लगवाएं। alberta.ca/measles पर जाकर पता करें कि क्या आप सुरक्षित हैं। यदि नहीं, तब आगे क्या करना है। अल्बर्टा सरकार का एक संदेश।
2: Whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
3: The time is 9 p.m.
4: You are listening to Fairchild Radio, CHKF FM 94.7, a multicultural

0: Good evening, assalamu alaikum, namaskar, sat sri akal, and good afternoon, good evening to all of you. It is Friday at 5. Your weekly dose of entertainment, information and hit desi music, your Friday drive home show, 20 degrees in and around Calgary. संगीत में मेरा और आपका साथ रहता है फ्राइडेज को. शो इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय सुर संगम रेडियो स्टूडियोज के नंबर 4037171947. कहते हैं पहले लोग मर जाते थे और रूहें भटका करती थी. लोग मर जाते थे और उनकी आत्माएं उनकी रूहें भटका करती थी. अब रूह मर जाती है और लोग भटकते फिरते हैं. मुझे बहुत डीपली इस लाइन ने टच किया सीरियसली. मॉडर्न लाइफ lost in social media and I, me, myself, meri duniya, mujhe kisi ki zarurat nahi, I'm the best. Aur is tarah ke aur jo human behavior develop hue hain pichle 10, 12, 13 saalon mein, ek dusri. Pehle insano ka parda hota tha ek dusre se. Meri jo kamiyan, kutahiyan, galatiyan hoti thi, wo mujhe sirf pata hoti thi, ya mere khuda ko pata hoti thi. Ab इन सारे प्लेटफॉर्म्स की वजह से हमारी एक एक पल की चीज दूसरों को पता होती है. तो उससे जो हमारा ट्रस्ट था दूसरों पे इंसानों पे दोस्तों पे रिश्तेदारों पे वो बहुत बुरी तरह से टूट फूट का शिकार हुआ. नतीजा लोग बिल्कुल अकेले हो गए. पहले लोग मर जाते थे और रूहें भटका करती थी. अब रूह मर जाती है और लोग भटकते हैं. प्रोग्राम में संगीत आपको लेके जाना चाहूंगा आज की पहली प्रेजेंटेशन की तरफ. अली जफर की आवाज है. हमारे शहर में बहुत जल्दी अली जफर आ रहे हैं फॉर लाइव इन कॉन्सर्ट सूफी म्यूजिक के लिए.
1: सारा दिन गाना सुनकर दादाजी
0: दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फोक सॉन्ग बाय अली जफर पश्तो के पर्शियन के बैकग्राउंड में
1: जब हमारा जुबान मिलाएगा.

0: Can you afford to miss my show? I bet you can't. Curl of headlines, adventure of music, passion and possession of what you want on your radio. Keep listening, keep driving.
1: वेलकम बैक प्रोग्राम संगीत में हूँ शान. ऐसा करते हैं कि एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ मैं और उसके बाद आपकी मुलाकात मैंने करवानी है. मेरे पास दो गेस्ट हैं स्टूडियो में. जैसा कि प्रोग्राम के शुरू में मैंने जिक्र किया था कि अली जफर यहाँ पर आ रहे हैं. अली जफर इज नोन फॉर फोक म्यूजिक, फॉर सूफी म्यूजिक एंड फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ म्यूजिक. लाइव मुझे याद है 2007 के 8 में अली जफर यहाँ पहले बार आए थे और मुझे कैलगरी मूव हुए हुए 2 महीने हुए थे और वो शो टेलिस कन्वेंशन सेंटर में मैंने होस्ट किया था अली जफर का. सो दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू कैलगरीज देसी कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी. और अली जफर का उस जमाने में छनों की आंख वाला गाना इतना पॉपुलर था एंड आई हैपन टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. तो उनसे मुलाकात भी हुई थी, बड़ा मजा आया था. और इस बात को हो गए अब 16-17 साल. तो 17 सालों में अली जफर हैज कम अ लॉन्ग वे. फिल्में की हैं, एक्टिंग की है, सूफी म्यूजिक बनाया है, बहुत डिफरेंट तजर्बात उन्होंने किए हैं. नाउ ही इज इन क्या कहना चाहिए, हमारे यहाँ जो एक इलीट आर्टिस्ट परफॉर्मर्स हैं उनमें से हैं. अली जफर कैलगरी में आएंगे 17 मई को और उस शो के बारे में बात करने के लिए कब, क्यों, कहां, कैसे और वगैरह वगैरह जितने आपके क्वेश्चन हो सकते हैं इंटरेस्ट के वो सारे उन पे बात करेंगे. और मेरे पास गेस्ट हैं जो स्टूडियो में आए हैं, इरफान तारिक और मोहम्मद अब्बास. दोनों बड़े इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं. लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले छोटा सा एक कमर्शियल ब्रेक में लेता हूं और उसके बाद आपसे होगी मुलाकात. बल्कि मुझे लगता यह है कि जो गाना मैंने आपके लिए लाइनअप किया था वो कन्वर्सेशन से पहले चलाने की कोशिश में करूंगा. राइट हियर इज कमर्शियल ब्रेक.
2: ओहो, आज फेर नहीं लोड मिलिया.
3: की होया?
2: बस पूछना, इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है ते बच्चियां नु फेर नहीं मिल होना 2 दिन.
3: ओहो, रह गए ना फेर पिछे. मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दंदी है ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है. तुसी आज ही उना नु फोन करो ते जल्दी तो जल्दी गल करके कोई हल लब्भो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको. फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001. सोनिक इंश्योरेंस.
4: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो? हुण कनाडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया.
5: कनाडा दे विच मर्सिडीज

0: And alhamdulillah, now we have the structure in place. The structure is there. And so this program is a fundraiser. The whole reason, the motivation behind this program is so that we may be able to support a beautiful cause, which is the Green Dome Islamic School.
1: Right.
0: We people who've been following have noticed that we've actually constructed the whole building, and we have the first two floors completed, and we have about 360 students who are currently studying there, learning education, Islamic education, Alberta curriculum education, in a beautiful environment, in a very safe environment, some cultural education, and it's an opportunity for kids to learn in an environment that's more catered to them. And that's what this service is. And it's a beautiful service, while at the same time producing Alberta curriculum as well. It's a very prestigious school, in my opinion, so far.
1: So the idea was to raise funds. Obviously, school ko continuously support chahiye, financial support chahiye. And this was one of the creative ideas.
0: Exactly.
1: Kyun na ek artist agar yahan aa raha hai, to logon ko invite kiya jaye usme. And uski jo net proceeds sari ho, woh jaye uske koi ek individual ya ek company ko jaye, wo. Institution के चलेगा, and I think that makes so much sense. Abbas भाई, आप बताइए कि ज़ाहिर है आप टीम को हेल्प भी कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए अब तक की क्या प्रोग्रेस है, कैसा चल रहा है?
2: जी, थैंक यू अली भाई. सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें इस प्रोग्राम में हमें आपने दावत दी, और ये प्लेटफॉर्म जो है हमारे सुनने वाले तमाम जो सामईन है उनको सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम. अच्छा अली जफर साहब का जो ये प्रोग्राम है, फर्स्ट टाइम वो जैसा कि आपने कहा कि वो 2007 में यहाँ पर आए, उसके बाद फिर अब यहाँ पर आ रहे हैं. लेकिन इसकी खास बात यह है कि इन्होंने जो 16-17 सालों में जो सफर तय किया, वो अब हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े लीजेंड एक्टर हैं, मॉडल हैं, और माशाल्लाह इस फर्स्ट टाइम जो वो कैलगरी में आ रहे हैं, वो स्पिरिचुअल सूफी एंड कवाली नाइट के का जो इवेंट है, ये प्रोग्राम हमारा जेनेसिस सेंटर में होने जा रहा है. और जो काज है, आप देखें कि कितना बड़ा काज है कि हमारा जो ग्रीन डोम इस्लामिक स्कूल है, उसका उसमें हमारी जो जनरेशन है, बच्चे हैं, यहाँ पर इस्लामिक स्कूल में पढ़ेंगे. कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई पॉलिटिशियन बनेगा. तो कितना बड़ा काज है जो इस इवेंट के लिए किया जा रहा है.
1: ओके, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा रीडायरेक्ट करना चाहूंगा कि इवेंट की जो प्रोग्रेस है
0: जी,
1: अगर आप थोड़ा सा उसको टच कर सकें कि टिकट्स जा रहे हैं, क्योंकि शो नेक्स्ट वीक
0: May 17
1: को ये शो हो रहा है जेनेसिस सेंटर में, और कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्राउड, अब तक की प्रोग्रेस क्या है?
0: We had the Green Dome Events Hall, and so we could have went there first, but then we decided, you know, and so we like, we need more space. We need more space. And so we decided, let's convert to the Genesis Center. We have a long-time relationship with Genesis Center. And so this program is going to be happening in the feature gym, in the large hall that they have. And so we have a capacity of about 1,000 to 1,200 people. And so that is what the arrangement is for that day. And then we have almost 50% sold out. And you know our community. Our community is very, very, they take their time. They procrastinate a little. And so 50% at this mark is really good. And sales are increasing day by day. We have our VIP seats are almost all booked out. Our preferred seats are booking out now. And then our general seats are, of course, are all there.
1: Sitting arrangement, is it like a round table or auditorium style?
0: And so it's an auditory style. As we know, the Genesis Center, I'm not sure if people have seen, we had some performers come there. The long form, we have the stage up ahead.
1: Yeah.
0: And then we have in a kind of surrounding
1: sections
0: surrounding an auditorium style. Absolutely.
1: Ek cheez jo bahut zahir hai, jab koi bhi cheez, there is always a first time. Aap jab pehli baar koi cheez karte hain, I remember सर सैयद खान जो है ना, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए पैसे जमा करे तो बड़ी मुश्किल उनको होती थी. इवेंचुअली ही हैड टू एंड अप डूइंग अ स्टेज प्ले जहां पर लोगों की अट्रैक्शन हासिल कर सके. सो वन क्वेश्चन ऑब्वियसली लोगों का ये होता है कि मैंडेट होता है कि जी ठीक है जी, ये तो एक स्कूल था और एक रिलीजियस स्कूल है, तो ऑल ऑफ अ सडन इन्होंने सिंगर को बुला लिया है, और इनका आपस में कोरिलेशन क्या है? सो आई एम श्योर यू प्रोबब्ली गेटिंग दैट काइंड ऑफ लिटिल बिट ऑफ फेयर इन देयर.
0: वी सॉ अ बिट ऑफ दैट इंटरफेरेंस, दैट बिट ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन. वी ऑल नीड टू कीप इन माइंड दैट this is a beautiful country in which we spend a lot of time on inclusion, diversity, and a world of things that are very creative. And this is not some crazy program. This is a Qawwali program. It's a Sufi program. Yeah. Qawwali, Sufi, love, respect, and spirituality. This is all parts of Islam. In fact, I think Canadian values are very Islamic compliant, very coherent with Islam. And so these all things move together. And so this program has nothing that's going to be out of nowhere. This is going to be a very respectable program, a very beautiful program. Everybody's going to enjoy it, and this is one thing

0: away are, so we're almost a week away.
1: Yeah, the countdown has started.
0: Yeah, ek week ek hai aur Genesis Center mein northeast mein ye ho raha hai. Main aapka poster dekh raha tha, bada lovely sa Genesis Center hai. 7:30 baje sham ko event hai. Doors open ho jayenge and event will start around 8:30. Theek hai. So sponsorships hain, tickets hain. कॉन्टैक्ट करना हो आप गूगल कर लें, सर्च कर लें, फेसबुक पे चले जाएं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी. एंड इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय ग्रीन डोम इस्लामिक स्कूल. टेलीफोन नंबर मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, 416-662-7861. और एक और नंबर है 403-477-6684. Irfan, or kuch, anything I'm missing jo is event ke baare mein you would like to add?
1: I don't think there's much that we're missing. I think it's just that time is running out. Tickets are available. You don't want to be the person who's going to go back 2 days before the event and then look for tickets and see that none of them are available.
0: So just sitting arrangement is like first come, first serve?
1: So the way it's going to work is we have three sections. First section is going to be general seating. That is the back 650 seats.
0: Right.
1: Then we have the preferred seating. That's going to be the middle section. Middle section. And so general seating is $50 per ticket. Then preferred seating is $75. The middle section, that is the middle 250 seats, and then the front 150 seats we have as the VIP seats. VIP seats are going to be the front three or four rows. So it's going to be first come, first serve, but your section is the one that's allotted to you. And then we also have VIP booths. This is for some of the people who are sponsors, people who are big donors who are going to be coming, who've already made their contributions. And so
0: those booths are for families, not like a to put their business or brands. Wo booth nahi hai.
1: No. So this is like a sofa.
0: Right.
1: And so there's about 10 sofas that are going to be at the front of people who've already made big contributions who will be coming that day. And
0: with their family, friends, colleagues.
1: Exactly. So they're going to have their people. And so inshallah, these are people that, you know, we need to respect them because they've made a commitment and a sacrifice for the Green Dome Islamic School. And so they're going to be at the front row. And anybody is still welcome to get those VIP booths if they're interested. It's $1,000 for a VIP booth and it seats up to 3 to 4 people. So inshallah, if you want to let me know, 403-4.
0: So tickets start basically from $50,
1: which you would be surprised,
0: and then obviously
1: $50.
0: Yeah, $50. Because I hate to bring that memory back again. वो तो उस ज़माने में मेरा ख़याल है कि $100 का टिकट था जब 17 साल पहले इवेंट किया था. तो $50 तो बहुत ही reasonable है. So listeners, if अगर आपने अभी tune in किया 94.7 FM पर, मैं हूँ शान, program संगीत studio, बातचीत में कर रहा हूँ. मेरे साथ हैं इरफान तारिक और मोहम्मद अब्बास, दोनों represent कर रहे हैं अली जफर का जो स्पिरिचुअल सूफी एंड कवाली नाइट कैलगरी में होने जा रही है मई 17 को इन जेनेसिस सेंटर. उसके बारे में टिकट्स आर स्टिल अवेलेबल. टिकट्स $50 से शुरू होते हैं डिपेंडिंग कि आपको किस तरह का चाहिए, फ्रॉम वीआईपी टू वीवीआईपीस. बिजनेस स्पॉन्सरशिप की अपॉर्चुनिटीज है. अगर आपकी मार्केट साउथ एशियन टारगेट मार्केट है, आप रियल्टर हैं, मॉर्गेज करते हैं, ग्रोसरी स्टोर है, इफ यू वुड लाइक टू रीच आउट टू दिस कम्युनिटी इन अ वेरी इफेक्टिव वे, तो आप उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. टेलीफोन नंबर मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, 416-662-7861, 403-477-6684. सबसे ईजी है कि गूगल कर लें, यू गेट ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इधर ऑन फेसबुक, गूगल, हेयर एंड देयर. आजकल ये बहुत आसानी हो गई है. एनीथिंग अब्बास भाई, एनीथिंग यू वुड लाइक टू से देन?
2: जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे ग्रीन डोम इस्लामिक स्कूल के इरफान साहब और बाकी जितनी भी मैनेजमेंट है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ा काज है जिसके लिए लोग काम कर रहे हैं, और अल्लाह ताला इनको हम सबको कामयाब करे इस प्रोग्राम के फंड रेजिंग के हवाले से, क्योंकि 250 अभी भी बच्चे जो है वेटिंग लिस्ट के में हैं. और जो मेन काज है वो ये है कि हम थर्ड फ्लोर पर जो है रूम्स बनाना चाहते हैं कि जो वेटिंग लिस्ट है वो कम अज कम हमें मिनिमाइज हो. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ जो स्पॉन्सर्स जो अवेलेबिलिटी है, जितने यहाँ बिजनेसमैन हैं और स्पॉन्सर्स के लिए इन पर रब्ता कर सकते हैं, जो मैंने नंबर पहले दिया था 403-477-6684 पे, और टिकट जो है ऑनलाइन ये बाय कर सकते हैं, मतलब eventbrite.ca पे $50 से इसका स्टार्ट है.
0: सो लवली गाइस, आई विश यू ऑल द बेस्ट. मेगा इवेंट हो उस दिन, अच्छी एग्जीक्यूशन हो स्टेज से, कट टू कट, और लोगों को मजा आए, और दिस माइट ओपन डोर्स फॉर सो मेनी फ्यूचर कवाली नाइट्स एंड इस तरह की म्यूजिक. क्योंकि अच्छा इवेंट हो जाता है तो अगली बार उसको करना, ऑर्गेनाइज करना, सेल करना बहुत आसानी हो जाती है.
2: जी जी बिल्कुल.
0: सो थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट एंड जॉइनिंग मी.
1: थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस. जज़ाकअल्लाह.
2: थैंक्स अ लॉट. आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी शो के हवाले से. थैंक्स अ लॉट.
0: थैंक यू.
3: Your choice, your voice. Zara Vakri type ki presentation. Full of masti, full of information. Program is being presented.

0: ben molt. A lot more. Keep listening. Sangeet Studio, Sean ke saath. Welcome back in Sangeet once again. Ek do important news aapki nazar kar lete hain, uske baad program continue rakhenge. Canadian history ki, Canada ki jo aerospace history hai, uski almost sabse badi deal, historic deal. Yani mother of all deals aap kahenge when it comes to aerospace ki industry jo Canada mein hai. Air Asia, Malaysia ki ek airline hai, private airline hai, usne ek record breaking order diya hai. 150 कैनेडियन मेड एयरबस A220 जेट्स का जो कि बनाए जाएंगे मिराबेल क्यूबेक में और ये जो डील है इसे वन ऑफ द बिगेस्ट एवर बिगेस्ट एरोस्पेस विन्स इन कैनेडियन हिस्ट्री कहा जा रहा है और इससे ना सिर्फ क्यूबेक की जो एविएशन इंडस्ट्री है बल्कि कनाडा को ये जो डिवर्सिफाई करने की कंटिन्यूसली प्राइम मिनिस्टर करने की कोशिश है ये उस कोशिश पे एक स्टैंप भी है कि अब आपको हर जो आप बिजनेस डील करते थे और अमेरिका की तरफ देखते थे अब आप देखिए अक्रॉस द ग्लोब मलेशिया में प्राइम मिनिस्टर कार्नी अभी कुछ महीने पहले गए थे मलेशिया में और मिडल ईस्ट का टूर किया ऑस्ट्रेलिया का टूर किया अफ्रीका का किया सेंट्रल अमेरिका का किया यूके यूरोप में तो खैर वो कंटिन्यू जा रहे हैं और नॉन यूरोपियन पार्टनर का उनको मिल रहा है जिसे कहते हैं टाइटल पहली बार हिस्ट्री में वहां की जो पार्लियामेंट है अभी लास्ट वीक प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने उससे स्पीच की जो कि किसी भी नॉन ईयू मेंबर की तरफ से पहली बार था सो इट इज सो गुड फॉर कैनेडियंस एंड फॉर कैनेडा कि हमने जो सारे अंडे एक बास्केट में रखे हुए थे और प्रेसिडेंट ट्रंप ने आंखें खोल दी पहले टर्म में और अब तो खैर इतनी आंखें खोल दी कि दोबारा बंद हो ही नहीं रही उससे कैनेडा ने पहली बार एक ट्रू इकोनॉमिक फ्रीडम को लेकर इंटरनेशनली डिवर्सिफिकेशन शुरू की है कि हम जो परसेंटेज है अमेरिका से हमारे बिजनेस की उससे बहुत तेजी से जितना काम करते चले जाएं उतना हमारी फ्रीडम के लिए हमारी इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए बहुत जरूरी है सो दिस डील जो कि एयरबस A220 कनाडा में बनाए जाएंगे 150 ऑर्डर्स मिले हैं और इसकी नेट वैल्यू है $19 बिलियन सो इट इज सच अ बिग सच अ ह्यूज विन फॉर कनाडा प्रोग्राम है संगीत ऐसा करते हैं कि कुछ कमर्शियल मैसेजेस आपकी नजर और उसके बाद प्रोग्राम में वापस मिलते हैं
1: ਨਵਾਂ ਟਰੱਕ ਚਾੜਨ ਲਈ ਥੱਬਾ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧੂਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਹਾਈਆਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ
2: ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਟਰੱਕ ਓਨਰ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸੋਨਿਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਮਾਨਸ ਪਹੁਜਾ ਨਾਲ 587-832-1208 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬ੍ਰੋਕਰ ਮਾਨਸ ਪਹੁਜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਬੈਸਟ ਟਰੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੇਟਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸੋਨਿਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 587-832-1208
3: ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬ੍ਰਿਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਮੈਟਰਸ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੇ ਹੋਮ ਡੈਕੋਰ ਦੀਆਂ ਜਾਨਦਾਰ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੀਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕੈਲਗਰੀ ਸਬਰਿਜ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਬ੍ਰਿਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਾਂਝਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੈ 3451 ਸਨਰਿਜ ਵੇ ਨਾਰਥ

0: back, relax, and fasten your seatbelts. This is going to be a hell of a ride. एकदम चिकास, हे बिड़ू, चिकास बोले तो एकदम धासू, धासू बोले जाओ, कूल है।
1: हेलो गोपी, शुक्र है तू फोन चुक लिया। जिद्दण दा नवा घर लिया, सज्जन मित्र फोन चुकनो भी गए।
2: ओ सारे डरदे नहीं चकदे, उनां नूं लगदा तू मूविंग ली कहूंगा। कौन इन्ने भारे समान नूं हाथ पावे।
1: ओ नहीं भरावा, मैं इंज नहीं करदा। आपां ते हर वार स्टार मूविंग वालियां नूं इक फोन करीदा। ओ बहुत वधिया तरीके नाल सारे घर दा समान सही सलामत बिना किसी झंझट दे मूव कर जांदे आ।
3: अपने घर जां ऑफिस दा समान मूव कराउणा होवे तां स्टार मूविंग दे मलकीत सिंह जी नूं अज ही कॉल करो। 4038701790 403-870-1790 स्टार मूवी। सत श्री अकाल भैन जी, कैलगरी च तुहाडा स्वागत है।
4: धन्यवाद भैन जी, पर मेरा एक मसला हल करो। मैं ता कैलगरी विच नवी हां, कोई वधिया जिहा ब्यूटी पार्लर दसो।
3: वधिया ब्यूटी पार्लर? ओ ता फिर नूर स्पा एंड हेयर कट वाले ही आ।
5: मेकअप, हेयर कट, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, फेशियल, मैनीक्योर, पेडीक्योर, हाइलाइट्स वगैरह सब कुछ।
3: नूर स्पा तो मसाज करानी है ता डायरेक्ट बिलिंग भी अवेलेबल है। मेकअप अते हेयर कट लिए याद रखो नूर स्पा एंड हेयर कट। 403-471-5435 2180-151 स्काई व्यू बे नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, नूर स्पा एंड हेयर कट।
1: ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ।
6: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਟਾਟਾ, ਮੈਂ ਫਾਊਂਡਰ ਹਾਂ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕ ਹਾਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਐਟ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਿੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਡਰ ਕਲਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਇਨਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 8257600983 'ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
0: We want to hit you hard with hit music. Because when hit music hits, you feel no pain. Keep listening, keep driving with Sean.

साथ माजी के झरोखों से एक और खूबसूरत गाना, सीधा सादा सिंपल म्यूजिक, खूबसूरत शायरी और कमाल की गायकी।

0: तू है तो हर सहारा है, टाइम पहले कभी रुका है ना आज रुकेगा। मेट का शो हुआ तमाम, आई विश ऑल ऑफ यू लव पीस रिस्पेक्ट हेल्थ और मस्त। आपसे मुलाकात होगी अगले फ्राइडे को इसी टाइम इसी चैनल पे, फिर आएंगे घर, खुदा लाया।
1: शुक्रिया आपने संगीत स्टूडियो ट्यून किया, शुक्रिया।
2: द टाइम इज 6 PM। You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.